0: एक जैसे कम फैमिली के लिए, जैसे कि जिसके पास ज्यादा मनी नहीं है फिर भी, जैसे सिकड़ी, अंगूठी, गाड़ी, भले चलाने ना आए लेकिन चाहिए ये सब सारा चीज।
1: पैसा रहा तो तने मैडम जी तो हम उतास बियाह करी तने।
2: Vaishali's grandmother is 80 years old and still working. She earns about a dollar a day making these clay piggy banks. She's already borrowed more than $5,600 for the weddings of her two other granddaughters. Now she's borrowed another $4,200 for Vaishali.
3: जो खर्चा है जो आपने 1 लाख लिया उसको आप क्या करेंगी?
1: दामाद जी को सिकड़ी बनवाए हैं, दामाद जी को अंगूठी बनवाए हैं, हंडा परात लोटा गगरा दुनिया का जो रितवाऊ लिए हैं।
3: उन्होंने मांगा है कि आप दे रहे हैं?
1: दे रहे हैं।
3: उन्होंने मांगा नहीं है? तो जब आपके पास इतना नहीं है तो आप उधार लेके क्यों उनको दे रहे?
1: तो इज्जत के लिए, अपने की इज्जत बनी रहे।
3: अगर आप नहीं देंगे तो इज्जत नहीं रहती?
1: कैसे इज्जत रही, दुनिया का कही? अरे दू जने के देने हमके ना मिलल, वैशाली कही के सबके देली, माई हमके ना देली।
2: Despite the financial pressure, Vaishali's excited. I join her family at a pre-wedding ritual called the Haldi for prosperity and protection from evil. She's not draped in gold, but marigolds.

0: Across town, another bride-to-be is preparing. Neha Jaiswal is 19 years old. She's also tying the knot tomorrow. But unlike Vaishali, her marriage has been arranged. Today, her family is hosting a mehndi. Henna is applied to her hands and feet, and it's said the darker the stain, the more cherished she'll be in her new home. This is only the second time Neha's met her fiancé, Ranjit.
1: उस दिन मैं कॉलेज गई थी और घर पे रिश्ता आया था मम्मी थी पापा थे सब कोई थे तो आए थे हमको देखने देखे पसंद किए उन लोग हाँ लड़के हम लोग को भी पसंद थे मम्मी पापा को भी पसंद थे तो वो साड़ी थी
0: Her only worry that she wouldn't be allowed to continue studying.
2: तो आपके बड़े सपने
1: हैं? हाँ टीचर बनना
0: Neha is in her first year of university and she's got exams coming up. But her family says waiting wasn't an option.
2: 19 साल तो बहुत छोटी उम्र होती है शादी कराने के लिए।
3: अब मजबूरी रहती है कि हम लोग बड़ा नहीं कर पाए होते हैं कि इतना उम्र का करेंगे तो और ज्यादा दहेज देना होगा जल्दी शादी नहीं होगा इसलिए हम लोग के पास नहीं औकात रहता तो जल्दी से कर देते
0: In India, younger brides are often seen as more desirable. More likely to have children and less likely to make trouble in their husbands' homes. As women get older, proposals can slow and social stigma can grow. That can shift bargaining power toward the groom's family and in some regions lead to higher dowry demands, even though the practice has been illegal for more than 60 years.
3: तो इसलिए अगर हम लोग गरीब हैं तो रिश्ता लगता है तो हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी कर दे अगर मिला ऐसा तो कर देने तो हम लोग लड़की बड़ी ज्यादा हो जाएगी तो लोग ज्यादा धन मांगेंगे दौलत तो कहाँ से दे पाएंगे
0: Ranjit's family didn't demand a dowry. Instead, he assured Neha that she'd be able to continue studying.
1: जब हम उनसे बात करते थे तो वो पहले तो रिस्पेक्ट दिए मुझे और मुझसे प्रॉमिस किए कि आपकी जो भी ड्रीम है मैं उसको पूरा करवाऊंगा
0: As morning breaks, Neha and Vaishali's wedding day is upon us. In the center of Chunar, a short walk from the holy Ganga River, thousands of locals are gathering in the town's main park for a unique event, a mass wedding.
4: This is what it looks like when 200 couples get married at the same time.